0: KZSU Stanford. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, यह है KZSU Stanford 90.1 FM. मैं हूँ प्रांजलि और आप सुन रहे हैं चाय टाइम. बहुत बहुत स्वागत है आपका. दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों से बहुत सारे मेहमान आ रहे थे, उनसे बातचीत हो रही थी और आपसे रूबरू होने का मौका ही नहीं मिल पाया. पर चलिए आज साथ मिलकर चाय पीते हैं और सुनते हैं कुछ बहुत अच्छे गाने. नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है गर याद रहे. लता जी का ये गाना जब भी मैं सुनती हूँ तो यही सोचती हूँ कि जो गाते हैं, जो अपनी आवाज दुनिया में लिखते हैं, वो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं. वो रहें या न रहें, उनकी मीठी आवाज हमारे दिलों में, इस दुनिया में गूंजती ही रहती है. और ऐसा ही एक नाम है, प्रबोध चंद्र डे. जी हाँ, जिन्हें हम जानते हैं मन्ना डे के नाम से. जुड़े रहिए.
1: KZSU Zootopia is our robot curated music service that takes over when our live DJs aren't available. Like a self-driving car, Zootopia operates with no human at the controls. Zootopia now streams epic tracks from thousands of our DJs' most played albums over nearly the past two decades, so you can enjoy the best of college radio KZSU style. Check out our live playlist at kzsu.rocks. Zootopia, truly the Bay Area's coolest college radio on KZSU.
0: फिर से एक बार आपका स्वागत है चाय टाइम पर. तो हम बात कर रहे हैं मन्ना डे की. साथियों, जब साहित्य मिलता है एक अनूठी आवाज से तो एक अलग ही जादू जगाता है. ऐसा ही एक मधुर मिलन था जब हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि श्री हरिवंश राय बच्चन जी की लिखी पंक्तियों को आवाज दी थी मन्ना डे ने. जी हाँ, मधुशाला. आपने मधुशाला पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, और अगर नहीं सुनी, नहीं पढ़ी, तो जरूर सुनिएगा. और अभी उसके कुछ अंश आपके लिए.

मधुशाला एक बार सुनने लग जाएं तो लगता है कि थमे ही नहीं, सुनते जाएं। लेकिन आज हमें सुनने हैं मन्नाडे के अलग अलग अंदाज। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे गाने से जो लिखा तो बहुत अच्छा ही गया है, लेकिन मन्नाडे की आवाज ने और पर्दे पर बलराज सहनी की अदायगी ने इस गाने को एक अलग ही मुकाम दिया है। तू प्यार का सागर है।

शंकर जयकिशन का मीठा संगीत और बेहद ही अच्छे बोल शैलेंद्र के। इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कहे कोई, कौन दिशा से हम आए। साथियों, वही तो मुश्किल है, कानों में कहने के लिए कोई नहीं। उलझन तो है ही, क्योंकि जिंदगी एक पहेली जो है, कभी तो ये हंसाए कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली।

0: यूं चले जाए अकेले कहां जिंदगी।
1: बेहद ही खूबसूरत गाना फिल्म आनंद से, जिसे लिखा था योगेश ने और संगीत था सलील चौधरी का। अब चलिए जरा उस दौर में चलते हैं जहां रूपहले पर्दे पर राज कपूर और नरगिस के प्यार का एक अनोखा मंजर था, एक से बढ़कर एक फिल्में और उतने ही खूबसूरत गाने। दोस्तों, जब कभी चांद दिखे, मौसम सुहाना सा हो, दिल आशिकाना सा हो, तो याद आते हैं राज और नरगिस, हसरत जयपुरी, मन्ना डे और लता दीदी की आवाज। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं।

प्यार की इकरार की बात हो तो एक सिग्नेचर सॉन्ग फिल्म श्री 420 से। कभी कैसा सारा कुछ जुड़ जाता है, जम जाता है और बन जाता है एक अमर गाना प्यार का। शैलेंद्र ने लिखा, मनाड़े और लता जी ने गाया, शंकर जयकिशन के संगीत के साथ, और जिस तरह राज कपूर और नरगिस ने इसे निभाया पर्दे पर विश्वास ही नहीं होता कि एक्टिंग है। सारी दुनियादारी एक तरफ, लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी एक्टिंग चेहरे पर झलकती है, लेकिन अगर किसी को किसी से प्यार है तो वो आंखों में दिख ही जाता है। और मुझे हमेशा लगता है कि इस गाने में राज कपूर और नरगिस एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। खैर, बात हो रही है गाने की, तो हम सुनते हैं प्यार हुआ इकरार।

अगला गाना एक बहुत ही मशहूर गाना फिल्म पड़ोसन से। कहते हैं कि इस गाने के रिकॉर्डिंग के समय किशोर दा और मन्ना डे में काफी अनबन हुई। मन्ना डे संगीत में किसी तरह का मजाक नहीं सह सकते थे, लेकिन इस गाने का फिल्मांकन ही ऐसा था कि कुछ कॉमेडी जरूरी थी। खैर, मन्ना डे ने अपनी बात रखी, किशोर दा ने अपना अंदाज, और हमें मिला एक बेहद ही खास गाना, एक चतुर नार करके सिंगार।

दोस्तों, जिंदगी में हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, हर रिश्ता जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे अहम, सबसे ऊपर होता है दोस्ती का रिश्ता। हर रिश्ते में पहला फैक्टर होता है दोस्ती। हो अच्छा दोस्त आपकी जिंदगी को सही मायने देता है, उसे पूरा करता है एक कोई जो आपके सबसे करीब होता है। गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ऐ बंदे मेरे, मैं ये मांगू महफिलों के दौर यूं चलते रहें, हम प्याला हो हम नवाला हो हम सफर हम राज हो, ता कयामत जो चिरागों की तरह जलते रहें। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी। फिल्म जंजीर से, जिसे फिल्माया गया है अमिताभ बच्चन और प्राण पर, यारी है ईमान में।

अगला गाना फिल्म तीसरी कसम से। इस गाने को बचपन में मैंने हजार बार सुना है, हजार बार गाया है अपने पिताजी के साथ। लोक संगीत से सजा, चलत मुसाफिर मोहलिनोरे पिंजरे वाले मुनिया।

बंगाली, गुजराती, मलयालम, भोजपुरी, ओडिया, कन्नड़ा, पंजाबी, अनगिनत भाषाओं में गाने गाए हैं मन्ना डे ने। अनगिनत नायकों को आवाज दी है। मोहम्मद रफी कहा करते थे कि आप सब मेरे गाने सुनते हैं, लेकिन मैं मन्ना डे के गाने सुनता हूँ। दादा साहब फाल्के, पद्म भूषण, राष्ट्रीय पुरस्कार, फिल्म फेयर, ऐसे कई अवार्ड्स और उपाधियों से मन्ना डे को नवाजा गया। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों के आगे, जिंदगी कैसी है पहेली। आज मन्ना डे हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी आवाज हमेशा हमारे दिलों में आबाद रहेगी। साथियों, घड़ी का इशारा हो गया है और जाते जाते आपके लिए फिल्म मेरा नाम जोकर से ए भाई देख के चल, आप भी देख कर चलिए। और दोस्तों, आपका यह हफ्ता बहुत अच्छा गुजरे, इसी दुआ के साथ मैं कहती हूँ अलविदा। मुलाकात होगी अगले रविवार इसी समय। टेक केयर।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के गोले पर

0: और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिसके पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार?